0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: दशकौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरी सेवा दिँदै आइरहेको यस शिव मेडिकलमा निम्न विशेषज्ञ सेवाहरू सुचारू भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
2: नियमित विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू मेडिसिन वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर जितनारायण यादव, प्रसूति तथा स्त्री रोग वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश यादव,
3: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रवि आचार्य,
4: हार जोड्ने नसा रोग तथा स्पोर्ट्स मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय रेग्मी,
5: भिडियो एक्सरे कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर नारायण बोहरा,
2: साथै ईसीजी पीएफटी मुटुको भिडियो एक्सरे इको
6: इन्डोस्कोपी सेवा
2: प्रयोगशाला डिजिटल एक्सरे सेवाका साथै अपरेशन सम्बन्धी सेवा तथा सल्लाहको लागि सम्झन हो।
7: नोट, यस शिव मेडिकलमा अब महिलाहरूको भिडियो एक्सरेका लागि कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट महिला डाक्टर दृष्टि लामी छानेद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
2: सम्पर्क शिव मेडिकल हल हस्पिटल रोड घोराईदाङ, फोन नम्बर 082560734 र 082560138।

0: वाया नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाया नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चांग चेक ये बेला बिहान को 10 बजे

0: निवारण करो या पानी चिर खाए।
1: न केही नै धात मैले झपै हातमा हो के होइन हो भनी आइजेलु काँचो बोला साँचो साँचो हो के होइन हो भनी तिम्रा बाउले सोधे च्याप।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5684 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रोडक्ट कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस बोतोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड।
1: नमस्ते, म गायक जगदीश तमाल, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम 91.3।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिसियन, हाड़ जोड़ने, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुंडू, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन, विधिवार ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ।

राम राम संजय 5 बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर में शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। नेपाल किसान महासंघ दांग शाखा सेफे 23 औं धान दिवस के अवसर में एक कार्यक्रम संपन्न कराखल। किसान महासंघ दांग का सभापति चन्द्र प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्री प्रचंड विक्रम न्यूपानी के बढ़पौना में अतिथि उग्र नेपाल किसान महासंघ के केन्द्रीय सदस्य खुशल घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर वेद बहादुर केसी, नेपाली कांग्रेस का जिला उपसभापति कमान सिंह भारती, महासमिति सदस्य भूबहादुर डांगी, क्षेत्रीय सभापति भीम प्रकाश खड़का, प्रदेश एक सभापति प्रकाश श्रेष्ठ, नगर सभापति तिलक रावत लगायत शुभकामना मंतव्य करल रह। 23 औं धान दिवस सम्पन्न गोराईसात बेसाही दांग में कार्यक्रम हुल रह। विद्युत मर्मत करना क्रम में दांग को तुलसीपुर स्थित विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र में कार्यरत दुईजना कर्मचारी कनकला करेन्ट लागल बाटिन। आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिक वडा नंबर 8 अश्वरा सब स्टेशन से वितरण कुहिना बालापुर ओ भमके फिडर मर्मत करना क्रम में सुपरभाइजर इन्चार्ज जितेन्द्र पुन ओ फोरममैन राजेन्द्र बुढ़ाथोकी करेन्ट लाग्न घाइते हुलखुट मंकनक्क राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल तुलसीपुर उपचार उतिरलक वितरण प्रमुख सुरेश कुमार महतो बटवारखल। वहां के अनुसार दिनकुन 12 बजे हो असिक करेन्ट लगलग हो। विद्युत मर्मत करना क्रम में 3 ठो फिडर मध्य 2 ठो फिडर केल सर्ट आउट कईकन ओ 1 ठो फिडर सर्ट आउट कर 20 सकल घोर्से करेन्ट लगलग हो। करेन्ट लागल पाछक उ स्थान में हाल विद्युत सेवा अवरूद्ध बा। कुछ समय में कर्मचारी पठाकन सेवा सुचारू करना तैयारी रलक समेत प्रमुख महत्व बटवारखल। समय में पानी नि पर्लक कारण दांग में असार 15 सुनसान रहल बा। असार 15 धान दिवस मनीती रहबेर धमाधम धान रोपाई होना बेला आज आइतबार से पानी परल पास दांग का धूर ठाव धान खेती कला का ब्याड धर शुरू करल बाट कुला पानी से सिंचाई होना ठाव में फिर लम्बा समयसम का खडेरी का कारण खोल्लो में पानी निहुबेर किसान को से असार द्वासर सातासम फिर धान का ब्याड धर पाइल निहुट। यी वर्ष बरसात कम होना हुई कारण छिटी समय में होना वो कम पानी में होना धान का जात लगाईला कृषि केन्द्र सुझाव दे रखल। धान खेती ढिलाई हुईल चिंता किसान हुक्नकला बाटिन कल से पर्याप्त रासायनिक मल निपाजिना चिंता से फिर सता रखलिन। यी वर्ष दांग 36,200 हेक्टर में धान खेती हुना कृषि ज्ञान केन्द्र दांग जना राखल। आज धान दिवस असार 15 आज मुरी फलेना मानव रोपना दिन यी अवसर में आज किसान उग्र धान लगा किलक चटारो में खेत खेट्टो मन व्यस्त देख पर्थ। धान के रोपाई के लाख समय में वर्षा निहबेर रोपाई ढील हुना चिंता मरल किसान उकनकला। आज बिहान से पर्लक वर्षा से खुशी खोरला लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय का लुम्बिनी प्रदेश का 12 जिला का तथ्यांक अनुसार धान रोपाई हुना 3,01,372 हेक्टर क्षेत्रफल मध्य हालसम 62,670.87 हेक्टर क्षेत्र में अकेल रोपाई उरील। कृषि विज्ञान निर्देशनालय का कृषि प्रचार अधिकृत नवीन गैरे जानकारी दे रखल हालसम में प्रदेश का 12 जिला में 20.8% अकेल रोपाई ओरा रहल। यी तथ्यांक गत वर्ष का अवधि से झंडे 4% कमी हो। दादुक हत्या को आरोप में भैया पकड़ परल बाट कोहलपुर नगरपालिक सर गोहवा में 20 वर्षीय विनोद चौधरी अपन सहोदर दादू 26 वर्षीय मनोज चौधरी का हत्या का आरोप में पकड़ पर्ल खुट। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर का प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पुन का अनुसार आईतवार संध्या 7 बजे हो मदिरा सेवन करल पास दादू भैया का बीच में सामान्य बाधन लेकिन विवाद हुई रहन। आपसी भनाभन का बीच में मनोज से भैया विनोदन ठोकलकन करबेर वहां भारी पठल उठाकिन कपारी में प्रहार करल रह। भैया विनोद का पठा प्रहार पास दादू मनोज सिक्टा नहर में खसल रह। घटना बारे सूचना पाइल पास प्रहरी बीट मदन चोक से प्रहरी सहायक निरीक्षक अंगद बहादुर थापा ओ इप्रका कोहलपुर से प्रहरी निरीक्षक पुन का नेतृत्व में टोली खटल पास नहर से मृतक मनोज का शव निकारल रह। प्रहरी पुगबेर हत्या आरोपी विनोद लगायत कपड़ा उह छराकन और कपड़ा लगाकन फरार हो सकल रह। प्रहरी से रात के जो सब पोषण मातम कला का भेरी अस्पताल नेपालगंज पुगल रह।
चितौन से पश्चिम तर्फ का एक केल कैंसर अस्पताल बांकी का खजुरा स्थित सुशील कोईराला फरखर कैंसर अस्पताल में गत एक महीना से धीर बड़ी समय से रेडियोथेरापी सेवा बंद हो रहल अस्पताल का इन्याक मेसिन बिगड़ल पास कैंसर उपचार का प्रमुख माध्यम मांझीना रेडियोथेरापी सेवा अवरूद्ध होबेर पश्चिम नेपाल का कैंसर का बेरम्याहक समस्या में पर्ल बाट दुई दिन अगाड़ी केल्प कार्यकारी निर्देशक के रूप में सरूआ होकन अलक डाक्टर नीरज भट्टराई से लियान्याक मेसिन बिगड़ल पास रेडियोथेरापी सेवा बंद हुईलक जनीति पदभार ग्रहण कर लगत्त मरमत पहल शुरू कर सैकलक बटवा रख हुईठा ताज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल संजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्ने बाटी अकस्क खबर मसे समाचार कक्ष कसक कुसंग रेन संग मैं शालिक राम चौधरी विदाहीटू रिरी मध्यपश्चिम उनीटी रवि राम राम।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: समस्या
3: पाठे घर में समस्या पाठे घर खस्ने को समस्या
1: पाठे घर में मासु पलाउने
3: निसंतान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठे घर में कैंसर भय नभए को चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मशीन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जांच निमिति यही असार 26 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नंबर 082-595-410 मोबाइल नंबर 98478-28913 र 98095-12871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ
5: नेपाली जुत्ता घर
4: राप्ती अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो जुत्ता चप्पलको शानदार घर
5: नेपाली जुत्ता घर हामी कहाँ नेपालका 10-15 बढी ब्रान्डका आकर्षक जुत्ता चप्पलहरू सीमित अवधिका लागि 10% देखि 50% सम्म बम्पर छुट
4: अब ढिला नगर्नुहोस् आफूलाई मन पर्ने जुत्ता आफै छान्नुहोस्
5: स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गरौं स्थान सिटी प्लाजा होटलको उत्तर पट्टि थारू गल्ली घुराही दाङ
4: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98577-71546

0: मध्य पशु हो।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जीव दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
4: हात खुट्टा भाँचिएको हात खुट्टा झमझमाउने ढाड कमर दुख्ने हार्ट जोड्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
6: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-585-218

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी
2: मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्यपश्चिम जांग यति बेला रात्रि को 9 बजे

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराईदाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिन्दी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने दो मालिक, हम तो भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
3: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
5: नमस्ते, म गायक जगदीश तमाल, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्य पश्चिम 91.4।